नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5

0: लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुभा रोहतगी। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has generated interest among the BRICS partners. The minister identified 3 broad areas.

मंगल। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर अपनी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। मैं हूं आपके साथ इस सफर के रेडियो हम सफर सोनाली और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन सा, जी हां घर आंगन। हर दिन की तरह आज भी कुछ ऐसी बातें जो हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी हैं, कुछ जानकारी, कुछ प्रेरणा और कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपको थोड़ी देर ठहर कर सोचने पर मजबूर करें। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे, जी हां हमारे ईमेल आईडी के जरिए जो है fmgoldga@gmail.com। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर।

फिल्म लोफर में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत। दोस्तों आज है 23 सितंबर और हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा और समान अवसरों को लेकर समाज में समझ विकसित करना है। अब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के लिए जो थीम रखी है ना, वो है बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा, यानी डिक्लेयरिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स। अब सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का नाम नहीं है दोस्तों, ये ना अपनी व्याकरण और अपनी संरचना वाली पूर्ण प्राकृतिक भाषाएं हैं। अब ना दुनिया भर में अलग अलग समुदायों द्वारा अगर आप यकीन माने तो पता है 300 से अधिक सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए जरा, हम में से ज्यादातर लोग अपनी बात कहने के लिए आवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन किसी के लिए हाथों की गति, चेहरे के भाव और आंखों का संपर्क ही संवाद का रास्ता हो सकते हैं, है ना। इसीलिए समावेश का मतलब सिर्फ किसी को अपने साथ खड़ा कर देना नहीं है, समावेश का मतलब तो वो है कि हम उस तक पहुंचने की भाषा और रास्ता भी बनाएं, क्योंकि संवाद के लिए आवाज जरूरी हो सकती है लेकिन समझने के लिए संवेदना ज्यादा जरूरी है, मानेंगे ना।

दोस्तों, फिल्म कश्मीर की कली में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज में ये गीत। आज जैसे कि हमने बताया 23 सितंबर है, एक और खास दिन आज भी हम मनाते हैं। जी हां, हम आज मनाते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। 1908 में बिहार के सिमरिया गांव में जन्मे दिनकर जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में ओज, आत्मसम्मान, संघर्ष और मानवीय संवेदना एक साथ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें महाभारत के कर्ण के जीवन को केंद्र में रखा गया था। कर्ण के संघर्ष, उसके आत्मसम्मान और उसके जीवन की विडंबनाओं को दिनकर जी ने जिस तरह शब्द दिए, वह रश्मि रथी को हिंदी साहित्य की यादगार कृतियों में शामिल करता है। दिनकर जी की लेखनी की शक्ति का अंदाजा इन पंक्तियों से लगाया जा सकता है। दोस्तों, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कितनी सीधी बात है, इंसान की पहचान उसके नाम या किसी और तरह से नहीं होती बल्कि उसके कर्म से बनती है। दिनकर जी की जो लेखनी है वो हमें उसमें आत्मविश्वास बार बार दिखाई देता है। उनकी रचनाओं और अपने समय के उस समय के बहुत से सवालों को उनकी रचनाएं उठाती थी और उनकी लेखनी में वो जुड़ा जाता था, लेकिन उनके भीतर की मानवीय संवेदना आज भी हमें उतनी ही प्रासंगिक लगती है। और शायद यही एक बड़े साहित्यकार की पहचान है कि भले ही समय बदल जाए लेकिन उसकी पंक्तियां मनुष्य से लगातार संवाद करती है। और यकीन मानिए, जब कुछ अच्छा हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, तो मन हमारा अलग ही खुशी से झूम उठता है।

ये झूमता गाता गीत जो आप सुन रहे थे, ये था फिल्म पराया धन से किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज थी। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े हैं और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और साथ ही हमें ये पता चलता है कि हमारे एफएम गोल्ड को आप लोग कितना पसंद करते हैं, साथ ही हाँ हमारे प्रोग्राम घर आंगन को भी। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हैं नवीन भाटिया जी, लिख रहे हैं, सोनाली जी कहाँ गायब हो जाते हो, स्वागत है आपका, शुक्रिया शुक्रिया आपकी ईमेल्स, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, जानकर हमें अच्छा लगता है कि आप कमी महसूस करते हैं। तो बस देखिए लौट आई हूँ और फिर मिलती रहूंगी, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ ये जुड़े हैं फहीम शलबाफ, श्रीनगर कश्मीर से जुड़े हैं और ये हमारे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर भी सुनते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि हमसे जुड़कर, ये शायद बहुत हमारी पुरानी श्रोता है, इनको ऐसा लगता है। बिल्कुल देखिए, ये रिश्ता ही हमारा ऐसा है कि आपके साथ कभी लगता ही नहीं है कि आप नए जुड़े हैं, क्या हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। आपका स्वागत है, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हमारे साथ ये हैं उमेश कुमार जी, ये ख्याला से जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं प्रोग्राम और गाने साथ में जानकारी भी बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया। देखिए आप लोग तारीफ तो करते हैं, प्रशंसा हमें किसी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ आपके सुझाव से, आपकी भगवान ना करे कोई परेशानी हो या आपको हमसे किसी तरह की कोई शिकायत हो, तो वो भी आप हमारे साथ जरूर जरूर साझा कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडी हम सफर सोनाली। देखिए दोस्तों, हमारे घर में सफाई हो, आंगन साफ हो, रसोई साफ हो, ये तो हम सब चाहते हैं, है ना। और लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी जो ये सफाई की है, ये घर की चौखट तक ही खत्म हो जाती है? नहीं, जिस सड़क से हम गुजरते हैं, जिस पार्क में हमारे बच्चे खेलते हैं या जिस बाजार में हम खरीदारी करते हैं या जिस सार्वजनिक जगह पर हम कुछ देर बैठते हैं, घूमते हैं, वो भी तो हमारा ही है ना। और इसी सोच को जन भागीदारी से जोड़ते हुए हमारे इस देश में इस समय स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान चल रहा है। ये जो अभियान है ना, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और इस वर्ष का जो इसका विषय है वो है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। यानी स्वच्छता केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की भागीदारी से जुड़ा एक

बहुत अहम विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से स्वच्छता के लिए अपना समय और श्रम देने का आह्वान किया था। आज भी स्वच्छता से जुड़े अभियानों में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण जगह दी जाती है। और देखिए, सफाई ही सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा 2026 में सारे सार्वजनिक स्थानों का बहुत सफाई से कायाकल्प करना, साफ सुथरी पाठशाला होना और इसमें युवाओं की भागीदारी, सफाई मित्रों की सुरक्षा और उनका सम्मान, जनभागीदारी और कमरे से उपयोगी संसाधन या माफ कीजिएगा कचरे से उपयोगी संसाधन तैयार करने जैसी गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। लेकिन किसी भी अभियान की असली ताकत तब बनती है जब वो हमारी आदत में उतर जाए, है ना। और देखिए, कूड़ा सड़क पर न फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, फिर अगर जहां संभव हो हर बार इस्तेमाल होने वाली चीजों की जगह बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें चुनना, मतलब एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज कभी भी आप कोशिश कीजिए उसे ना इस्तेमाल करें, और सफाई करने वाले हाथों का सम्मान करना। जी हाँ, हमारे आसपास हमारे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी सफाई, उनकी मेहनत का सम्मान करना। और हाँ, घर में भी आपकी जो माँ है, आपकी पत्नी है या घर की महिलाएं हैं, उनकी साफ सफाई में पूरा योगदान देना पूरे परिवार का एक धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। और हमें अपनी इस कर्तव्य परायणता को आगे भी, समाज के लिए भी आगे लेके चले जाना चाहिए। और देखिए, छोटे काम से ही ना बहुत बड़ी तस्वीर बनती है, क्योंकि स्वच्छता एक अभियान है। जब तक हम उसे बाहर से देखते हैं, जिस दिन वह हमारी आदत बन जाती है उस दिन वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि इस धरा को हरा भरा और सुंदर कौन नहीं देखना चाहता,

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म से आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, हमारे श्रोता हैं। ये हैं गौरीशंकर जी, नांगलोई से लिखते हैं, सोनाली बेटा राम राम। जैसे हम खाने का इंतजार करते हैं वैसे ही आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, सुनकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका गौरीशंकर जी, आप इतने प्यार से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारा इतनी हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन ना उच्च शिक्षा की जो फीस होती है और दूसरे खर्च कई परिवारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे ना नवंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भी आर्थिक कठिनाई के कारण मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से अगर किसी वजह से वंचित रह रहे हैं तो ना रहें, और इस योजना के तहत ना देश के कुछ ऐसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहां पर वो अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं और उन्हें वहां पर प्रवेश पाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अपना दोस्तों इस ऋण की जो खास बात है वो ये है कि इसके लिए जमानत और तीसरे पक्ष के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। और ना यहाँ पर एक बहुत खास बात ध्यान देने के लिए जरूरी है, वो ये है कि शिक्षा ऋण की कुल राशि की कोई एक अधिकतम सीमा इस योजना में तय नहीं है, यानी ऋण की राशि पाठ्यक्रम की फीस, संस्थान से जुड़े दूसरे खर्चों और उचित शैक्षणिक और जीवन यापन संबंधित खर्चों पर निर्भर करती है। और इसके अलावा ना जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है उनके लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है, और ये सहायता पाठ्यक्रम की अवधि और उसके बाद एक वर्ष की जो स्थगन अवधि के दौरान दी जाती है। अब दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ना, इसमें आवेदन की प्रक्रिया जो है वो डिजिटल है पूरी तरह से। इसके लिए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपनी पसंद के बैंक का चुनाव किया जा सकता है और पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है। अब देखिए एक विद्यार्थी आवेदन के समय अधिकतम ना एक साथ 3 बैंकों का चुनाव कर सकता है। एक और जरूरी बात वो ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए संस्थान का निर्धारित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में होना और प्रवेश का योग्यता के आधार पर होना बहुत जरूरी है। अब ना प्रबंधन कोटे से जो लिया गया प्रवेश होता है वो इस योजना के लाभ के लिए पात्रता उसकी नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बच्चा उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है ना, तो केवल किसी भी बात पर भरोसा न करें, आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता, संस्थान और आवेदन से जुड़ी जानकारी जरूर जांचें। आपको इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है pmvidyalakshmi.co.in, यानी pmvidyalakshmi.co.in, क्योंकि हम जानते हैं कि सही समय पर मिली सही जानकारी कई बार किसी विद्यार्थी के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती है।

अखियों की झरोखे से। इस फिल्म में आप सुन रहे थे हेमलता के साथ शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना। अच्छा दोस्तों, हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं और इस बात पर कई बार अमल भी हम करते हैं और बहुत बार कर रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है। और लेकिन ना, जब किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए छोटा सा कोई प्रोत्साहन भी मिल जाए ना, तो बदलाव थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। देखिए, अब मैं आपके लिए बहुत प्रेरणादायक एक चीज लेकर आई हूँ। वो ये है कि गुजरात में अंबाजी की पदयात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक ऐसी ही पहल की गई है। देखिए, इस पहल में ना इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की बोतलें जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और 10 प्लास्टिक की बोतलें जमा करने पर स्टील की दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बोतलें होती हैं वो देने की व्यवस्था की गई है। मतलब आप 10 यूज की हुई प्लास्टिक की बोतलें दीजिए और उसके बदले में एक स्टील की बोतल आपको दी जाएगी। पदयात्रा और धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये तो हम मानते हैं, और ऐसे में पानी की बोतलों से पैदा होने वाला कचरा भी बहुत बार बढ़ जाता है ना। और इसी पहल का विचार जो है वो यही है कि इस्तेमाल के बाद जो बोतल होती है वो सड़क के आसपास फेंकने की बजाय उसे जमा किया जाए और उसकी जगह ऐसी बोतल दी जाए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक छोटी सी अदला बदली। और 10 इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बॉटल्स कम और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली एक टिकाऊ बोतल ज्यादा सही है ना, है ना। तो देखिए, ऐसे में बात सिर्फ एक बॉटल की नहीं है, बात उस आदत की है जो धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। और अगर हम घर से निकलते समय अपनी पानी की बोतल साथ रखें, बाजार जाते समय कपड़े का थैला रखें और किसी चीज का इस्तेमाल खत्म होने के बाद यह सोचें कि उसे फेंकना जरूरी है या नहीं, तो पर्यावरण के लिए हमारी छोटी सी कोशिश बहुत ज्यादा मायने रख सकती है। क्योंकि प्रकृति के जो हमारी जो जिम्मेदारी है ना प्रकृति के लिए, वो हमेशा किसी बड़े

नाम से शुरू नहीं होती बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही ये बात आगे बढ़ती है। और इसी तरह की बातों को मद्देनजर रखते हुए ये पहल गुजरात में शुरू की गई है। तो ये हुई एक बहुत प्रेरणादायक एक जानकारी आपके लिए। और अब सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत।

थोड़ी सी बेवफाई, इसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों हम आगे बढ़े उसके पहले बता दें हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत हरियाणा से। लिखते हैं कि इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा इन्हें। और लिख रहे हैं स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, ना रखो घर में खुला पानी, फिर नहीं चलेगी मच्छर की मनमानी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, इस बात को हम सभी को अमल में लाना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, अब हम आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे अनोखे गांव की ओर जहां रातें आज भी बिजली की रोशनी से नहीं बल्कि दिए की लौ से जगमगाती है। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में बसा कुरमा ग्राम अपनी अलग जीवन शैली के लिए जाना जाता है। पता है दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों ने ना आधुनिक सुविधाओं से कुछ दूरी बनाकर प्रकृति के करीब रहने का रास्ता चुना है। गांव में बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता पता है, और ना सूरज ढलने के बाद घरों और आसपास की जगहों को रोशन करने के लिए तेल के दीयों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर खेती भी प्राकृतिक तरीके से की जाती है। खाना बनाने के लिए मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और चूने जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खाना पारंपरिक तरीके से बनता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। देखिए, एक तरफ आधुनिकता के दौर में आदमी जहाँ मशीन की तरह काम करने से बीमार पड़ जाता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ जीवन यापन करते हुए खुश रहते हैं। इतना ही नहीं, गांव के सभी लोग धनी परिवारों में पैदा होने के साथ ही उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ लाखों में वेतन वाली कंपनियों में इन्होंने काम किया है। लेकिन आपको पता है, मशीनी जिंदगी से ऊब कर वे सब कुछ पीछे छोड़कर प्राकृतिक वातावरण अपने साथ इस परिवार में, अपने परिवार के साथ कुरमा गांव में बिता रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। कितना अच्छा तरीका है ना अपने आप को प्रकृति से जोड़ने का और अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रखने का। ऐसे गांव में कौन नहीं जाना चाहेगा, आप जाएंगे?

आशा भोसले लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रोफेसर का आप गाना ये सुन रहे थे। दोस्तों आपको एक खास जानकारी यहाँ पर देते हैं। बिहार के नालंदा की बावन बूटी हस्तकला कला हमारे देश की उन परंपराओं में शामिल है जिनमें कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहता, वो अपने साथ एक पूरी सांस्कृतिक कहानी लेकर चलता है। इस कला को आपको पता है अब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल चुका है। भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका नाम नालंदा बावन बूटी साड़ी एंड फैब्रिक्स दर्ज है और इसका पंजीकरण 27 मार्च 2026

हुआ है। बावन बूटी नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। बावन बूटी यानी ऐसी बावन बूटी जो कपड़े पर बुनी जाने वाली छोटी छोटी आकृतियां होती हैं। नालंदा के बुनकर अपनी पारंपरिक बुनाई में कमल, पोथी वृक्ष, पीपल के पत्ते, धर्मचक्र और दूसरी सांस्कृतिक आकृतियों को कपड़े पर उकरते हैं। यानी एक साड़ी तैयार होती है, लेकिन उसके साथ तैयार होती है एक कहानी, किसी परिवार के हुनर की कहानी, किसी गांव की पहचान की कहानी और उन हाथों की कहानी जिन्होंने बदलती समय के बीच अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया। जीआई टैग किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी वस्तु और उसकी विशिष्ट पहचान को आधिकारिक मान्यता देता है। बावन बूटी को यह मिली जो पहचान है, यह नालंदा की इस पारंपरिक बुनकरी को एक नई पहचान देती है, है ना। तो बस अब हम आ गए हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी चरण पर। चलते चलते आपके लिए ये गीत।

जी हाँ, लौट कर मैं भी आऊंगी आपके साथ किसी और दिन इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

Kangen. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के

0: 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है लेकिन निर्णय आपका होगा।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है। डेटा आपको सूचना दे सकता है लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरी हुए रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और एआई सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लक्ष्मण रिम्बुई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत की जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23-37 से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21-42 से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुभा रोहतगी। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।

0: भुगतान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वालों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं, आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत सी फिल्म जो कि उस वक्त के दौर के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। जी हाँ, उस वक्त का दौर कहीं तो वो दौर जब भारतीय सिनेमा में सस्पेंस, थ्रिलर और साथ ही साथ बहुत ही सुरीले संगीत का एक अनोखा संगम देखने को मिलता था। जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक में बहुत सी म्यूजिकल थ्रिलर फिल्में आई थी और उन्हीं में से एक फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे निर्देशित किया विक्रम भट्ट साहब ने। वैसे विक्रम भट्ट साहब ने बहुत सी फिल्में जो है म्यूजिकल थ्रिलर बनाई है, लेकिन ये फिल्म की एक अलग ही बात थी। तो लीजिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 1996 की फिल्म फरेब, जिसे निर्देशित किया विक्रम भट्ट ने। और इस फिल्म में अगर हम कलाकारों की बात करें तो ये इस फिल्म में एकदम सभी कलाकार जो थे वो बिल्कुल नए थे, नवोदित कलाकार थे, फराज खान, सुमन रंगनाथन, जबकि उनके साथ थे मिलिंद गुना जी। जी हाँ, सभी कलाकार एकदम नए थे, लेकिन ये फिल्म उस वक्त काफी अच्छी तरह से, मतलब कहें ना कि आप एक व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा सफल रही थी ये फिल्म। और ये फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म को प्रेरित कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है ये प्रेरित थी 1992 की एक अमेरिकन फिल्म अनलॉफुल एंट्री से। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई थी। इस फिल्म में दो कपल की कहानी दिखाई गई, जिसमें एक कपल डॉक्टर रोहन वर्मा यानी कि फराज खान और उनकी पत्नी सुमन यानी कि सुमन रंगनाथन, ये एक खुशहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहे होते हैं। और रोहन जो है, डॉक्टर रोहन अपना एक घर खरीदते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनके पड़ोस में इंस्पेक्टर देव यानी कि मिलिंद गुना जी अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आते हैं। जो देव हैं वो बहुत ज्यादा शक्की, गुस्से वाले और अजीब किस्म के इंसान हैं और अपनी पत्नी के ऊपर लगातार शक करते हैं और मतलब हर वक्त उनके बीच में झगड़े और गलत चीजें चलती रहती हैं। दूसरी तरफ रोहन और सुमन बार बार बीच बचाव भी करते हैं, उस लड़की को बचाते भी हैं, पत्नी की उसकी मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से जो देव है वो रोहन से नाराज हो जाते हैं। नाराज बोले तो मतलब वो उनसे एक तरह से रंजिश रखने लगते हैं कि ये हमारे मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। और एक दिन क्या होता है, इंस्पेक्टर देव अपनी पत्नी, मतलब जो उनकी पत्नी है उनकी हत्या हो जाती है। और बड़ी चालाकी से देव सारे सबूत इस तरह से दिखाते हैं कि जो सारा इल्जाम होता है वो आता है डॉक्टर रोहन के ऊपर। रोहन जो कि निर्दोष है, उसके बावजूद पुलिस उनको ले जाती है गिरफ्तार करके, लेकिन उनकी पत्नी सुमन साबित करने पर लग जाती है, ये तलाश करने लगती है, अपने पति को बेगुनाह साबित करने में पूरी तरह से जुट जाती है। और जांच के दौरान उसे पता चलता है कि जो ये मर्डर हुआ है देव की पत्नी का, वो कोई सिंपल मर्डर नहीं है, बल्कि देव ने पूरी तरह से एक साजिश रची है जिसमें वो रोहन को फंसा सके, उसको फंसा करके जेल करे और सुमन को हासिल कर सके। लेकिन अंत भला तो सब भला, और वही होता है अंत में, सुमन और रोहन मिलकर इंस्पेक्टर देव के जो खतरनाक इरादे होते हैं उन सबका पर्दाफाश करते हैं और रोहन बेगुनाह साबित होते हैं, बरी होते हैं और बुराई की हार होती है और भाई जो सच्चाई होती है वो जीत जाती है।

तो अगर हम बात करें इस फिल्म के कलाकारों की, तो इस फिल्म में जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लीड एक्टर हैं वो हैं फराज खान, फराज खान जिन्होंने कि डॉक्टर रोहन का किरदार निभाया इस फिल्म में, और वो यूसुफ खान जो कि मशहूर विलन रहे हैं अपने वक्त के, उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं जिन्होंने अमर अकबर एंथनी में भी काम किया था, और सबसे बड़ा ब्रेक उनको मिला फिल्म फरेब में। धमाकेदार उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, और उनकी जो सादगी थी, उनकी जो मासूमियत थी, और जिस तरह से उन्होंने इमोशनल जो एक्टिंग की है इस फिल्म में, वाकई में वो काबिले तारीफ थी। और ये वो फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने बहुत सी और भी फिल्मों में काम किया, और उन्होंने इसके बाद मेहंदी फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ भी काम किया। लेकिन आपको बता दें कि 1989 की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है मैंने प्यार किया, इस फिल्म में प्रेम का जो किरदार है वो पहले फराज खान को मिलने वाला था, लेकिन एन मौके पर वो बीमार हो गए और उसके बाद वो शूटिंग नहीं कर पाए, और ये रोल मिला फिर सलमान खान को। आप सोचिए, सलमान खान को अगर वो फिल्म नहीं मिलती तो वो जो इतनी खूबसूरत सुपर डुपर हिट फिल्म रही। खैर चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फिल्म की एक और नवोदित कलाकार के बारे में, वो हैं सुमन रंगनाथन। भाई वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए जरूर नहीं थी, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में यानी कि कन्नड़, तमिल, मलयालम सिनेमा में वो एक जानी पहचानी अभिनेत्री थी। वहां पर उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं थी, और ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, और ये फिल्म के बाद वो रातों रात अपनी खूबसूरती और इस फिल्म के गीतों की वजह से एक अलग ही सेंसेशन बन गई, और उसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया। आओ लौट चलें, कुर्सी, बागी और बाजार जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। और अब बात करते हैं इसी फिल्म के एक और खास और अहम किरदार मिलन गुनाजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिलन गुनाजी जिन्होंने कि इस फिल्म में इंस्पेक्टर देव का किरदार निभाया, और एक ऐसे अजीब से भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया, और अपनी आवाज, लंबी कदकाठी और खतरनाक एक्टिंग से उन्होंने वाकई में फिल्म में पूरी तरह से जान डाल दी, और शायद यही वजह थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट विलन का नॉमिनेशन भी मिला। जी हाँ दोस्तों, पहली ही फिल्म से नॉमिनेशन भी मिला, तो वाकई में दमदार तो रहा होगा उनका अभिनय। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हम सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से उदित नारायण की आवाज में।

आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हम बात कर रहे हैं 1996 में आई फिल्म फरीब के बारे में, जिसको निर्देशित किया वतन भट्ट ने। हमारे पास बहुत से संदेश भी आए हुए हैं जिनको हम शामिल कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। और ये संदेश हमारे पास आया है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन का। और दोस्तों अगला जो संदेश है उसको भेजने वाले हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह के साथ राजेंद्र जी शाह। तेलंगाना निजामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं शेखल्ला बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना। मेरठ से जुड़े हैं कविता और दिग्दर्शन गौड़ हमारे साथ, यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या, अविरल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश आया उसको भेजने वाले हैं अजित भावसा जी और इन्होंने हम तक बहुत ही खूबसूरत जानकारी भेजी है। लिखते हैं कि 1996 की आई ये फिल्म फरेब अपने दौर की काफी ज्यादा चर्चित और सुपरहिट फिल्म थी। और लिखते हैं कि इस फिल्म की जो कहानी है वो हॉलीवुड फिल्म से ली गई है। और लिखते हैं कि इसी साल हॉलीवुड से प्रेरित होकर एक और फिल्म आई थी, सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी टक्कर, लेकिन फरीब को दर्शकों ने कहीं ज्यादा पसंद किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और लिखते हैं कि मुख्य किरदार निभाने वाले फराज खान की स्क्रीन प्रेजेंस को तो सराहा गया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में फराज खान की असली आवाज नहीं थी। लिखते हैं कि

खराब डिक्शन या फिर कहें कि निर्देशक की पर्सन के वजह से उनके पूरे डायलॉग्स किसी और दूसरे वॉइस एक्टर की आवाज में डब कराए गए थे। बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताए कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख हमारे साथ जुड़े हैं। गांव वाराणसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से। वडिंगखेड़ा से जुड़े हैं, वडिंगखेड़ा पंजाब से जुड़े हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत और मकर जुड़े हमारे साथ, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से, और ये इशाक मोहम्मद जी जुड़े हैं चूड़ी छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीतार गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीबी राणा जी जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से। ग्राम नागरकोरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू के साथ। सहारनपुर से जुड़े हैं सैयद मशरूर, साइना अदीब, नाजिया इब्राहिम हमारे साथ जुड़े हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहर के साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि इस फिल्म के गीतकार इंदिवर के लिखे हुए गीतों से इस फिल्म को सजाया गया था। जतिन ललित जी का संगीत और उनको आवाज दी कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण जी के साथ अभिजीत ने। और बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत जानकारी के लिए। भवरपुर बसना से जुड़े हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, अक्षय कुमार देवांगन, और ये अगला संदेश हम तक आया इसको पहुंचाने वाले हैं एक बार फिर से राजकुमार डूडी जी। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फजिलका पंजाब खेड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवानशी खेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो हम तक आया उसको भेजने वाले हैं फारूक अली खान। ये कहां से संदेश भेज रहे हैं जानकारी इन्होंने हम तक नहीं दी है। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पल्स और विलिस डिकेस्ट्रो के साथ में। ये संदेश जो आया है हमारे पास अगला, इसको इस संदेश को अगले संदेश को भेजने वाले हैं गुरमीत सिंह जी, गुरमीत सिंह नीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश भेजने वाले हैं पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी के साथ में। और अगला संदेश जो है शिवा गोप प्रेम, कपिल शिवांश और संगीता गोप, लिपि गोप के साथ में आया है। इसको भेजा है इन्होंने जिला पश्चिम सिंह भूप चाईबासा झारखंड से। कविता गौड़ और दुखदर्शन गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं मेरठ से। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। जी दोस्तों, ये थे वो सभी संदेश जिन संदेशों के जरिए आप सभी हमसे जुड़े। और आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा उसके लिए बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और हम आज इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में हमने बात की फिल्म फरेब के बारे में, जो कि 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, काफी ज्यादा हिट फिल्म थी, प्यार सस्पेंस और म्यूजिक के जादू से भरी हुई फिल्म फरेब का ये जो सफर है इसको हम अब यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा और जो उस वक्त की कुछ यादें हैं वो जरूर ताजा हो गई होंगी। तो ये जो फिल्मों का कारवा जो है अभी हम इसको रोकते हैं, छोड़े जाएंगे आपके लिए एक और खूबसूरत संगीत कुमार सानू की आवाज में। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि 2:30 पर एक बार फिर से हाजिर होंगी आपके साथ अंजू पांडे होंगी, आप सभी की पसंदीदा आरजे, और 3 मैटनी मेलोडीज के साथ एक बार फिर से मैं यानी कि प्रीति त्यागी हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नूं एआई दी नवी तकनीक इंटरनेट अते डाटा दी सही इस्तेमाल करन दी अपील की थी। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि टैक्स प्रशासन कागज तो डाटा संचालित अते डिजिटल संचालित प्रणालियां वल वध रहा है। पंजाब दियां पंज सहकारी खंड मिलां ने माली प्रबंध गन्ना विकास ते तकनीकी कुशलता लई राष्ट्रीय अवार्ड जीते ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने अज 8 साल पूरे कर ले ने। ओलंपिक तमगा जेतु मीराबाई चानू ने जापान विच एशियाई खेडां विच औरतां दे भार चुक्कण दे मुकाबले दी 49 किलोग्राम श्रेणी च चांदी दा तमगा जित्तिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों नूं एआई दी नवी तकनीक इंटरनेट अते डाटा दा सही

0: इस्तेमाल करने की अपील की थी। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा विखे महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के 75वें कन्वोकेशन समारोह च विद्यार्थियों ने कहा कि डेटा तुहानू सूचना दे सकता है पर फैसला तुहाडा होगा।
1: आपका विवेक होना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है। डेटा आपको सूचना दे सकता है लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
0: राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को जियो ते जियो जीवन दियो दी सोच नाल अगे वधण नूं कहा। उन्होंने विद्यार्थियों को साल 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करन च योगदान पाउण लई भी कहा।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: उन्होंने सिक्ख्या समेत वक्वा खेतरां विच औरतां दी वध रही हिस्सेदारी दी शलाघा कीती। कन्वोकेशन समारोह दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 तों वध विद्यार्थियों नूं डिग्रियां प्रदान कीतियां ते 160 विद्यार्थियों नूं कुल 201 सोने दे तमगे प्रदान कीते। राजपाल आचार्य देवव्रत ने भी डिग्रियां प्रदान प्राप्त करन वाले सारे विद्यार्थियों नूं बधाई दित्ती। राष्ट्रपति मुर्मू जो गुजरात के दो दिन दौरे ते ने अज वडोदरा विच ब्रह्म कुमारी से ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रोग्राम दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीनीकरण लई अध्यात्मक जागरूकता प्रोजेक्ट की शुरूआत भी करेंगे अते विकसित भारत लई युवा राष्ट्र निर्माण लई अंदरूनी ताकत नूं जागरूक करना मुहिम का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि टैक्स प्रशासन कागज ते संबंध आधारित प्रक्रियावां तों डाटा संचालित ते डिजिटली संचालित प्रणालियां वल वध रहा है। अज नवी दिल्ली विच ब्रिक्स टैक्स मुखियां दी मीटिंग दे उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन करदियां श्रीमती सीतारमन ने कहा कि भारत दे फेसलैस असैसमेंट पहलां तों भरे रिटर्न रियल टाइम इनवॉयस प्रमाणीकरण अते एआई समर्थ टैक्सदाता सहायता दे तजर्बे ने ब्रिक्स भाईवालां विच दिलचस्पी पैदा कीती है। खजाना मंत्री ने इस साल दे ब्रिक्स टैक्स सैशन तों उभर रहे तीन व्यापक खेतरां तकनालोजी शासन ते लोकां दी पछाण कीती। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि मीटिंग दो नवे कार्य समूहां अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन अते ट्रांसफर कीमत अते मालिया अंकड़े लई कारज खेतर दस्तावेजां ते विचार करेगी। इटली दे उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि उन्हां दा देश भारत नाल एक विशेष रणनीतिक भाईवाली सांझी करदा है अते इस भाईवाली तहत ही उन्होंने विदेश मंत्री नाल मीटिंग की थी। एंटोनियो ताजानी ने कल अपनी मीटिंग तो बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट विच लिखा कि इस ढांचे विच असी नेविगेशन दी आजादी नूं यकीनी बनाउण दी महत्ता नूं सांझा करदे हां जो कि व्यापारक मार्गां दी सुरक्षा संपर्क अते साडियां आर्थिकतावां दे विकास लई जरूरी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपने एक पोस्ट विच कहा कि साडियां चर्चावां खाड़ी दी स्थिति आईएमईसी अते यूक्रेन संघर्ष ते केंद्रित रहीआं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वध रहे भूसियासी तनाव आर्थिक चुनौतियां जलवायु नाल संबंधित आफतां ते बहुपक्षी प्रणाली ते वध रहे दबाव नूं हल करन लई दुनिया दे विकासशील घट विकसित अते गरीब देशां विचकार वधेरे सहयोग लई कहा है। श्री जयशंकर कल न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें सैशन दे मौके ते आलमी दखण दे देशां दी मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन। मीटिंग दौरान उन्होंने कहा कि आलमी स्थिति विच वधदे टकराव सप्लाई लड़ी अते व्यापार ते दबाव खंडित निवेश प्रवाह वधदे कर्जे दे जोखम अते विकास लई नाकाफी मालिये दीआं समस्यावां देखियां जा रही ने। उन्होंने कहा कि विकासशील अते घट विकसित देशां नूं सप्लाई लड़ी मालिये अते संपर्क रुकावटां वर्गीआं मुख चुनौतियां दा हल करन लई इकट्ठे काम करना चाहिदा है।
2: India's engagement with the Global South.
3: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRN ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ SMHA ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ

0: हासिलकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है।

0: ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
3: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
2: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
4: माय नेम इज रमेश।
5: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूं। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
4: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपीज।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण उड़ीसा

0: तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: There is a Pentis National News Service 24 Intro 7 ikan program la ngin chigut pin medium wavika du akashwani kargil inbox po nimi baja ngis na fet sonsuk kasata NCERT gralika mallakyon utkan sponsor program polangin mazat umang

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
1: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
1: श्रोताओं, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
1: जी, तो आज हम आपको

0: उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहां न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
1: जी।
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
1: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
1: जी।
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
1: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
1: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
1: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
1: जी,
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फ़ारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा, और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फ़ारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
1: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहाँ एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता।

0: दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया।

0: चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।
3: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है, देखो डाकिया आया।
4: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिये का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
5: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें।

0: जाते
1: किसी एक दिन
2: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकी आया। चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
4: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
3: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
4: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
3: नेटवर्क क्या होता है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
4: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
3: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
4: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
3: तो आप पूरी दुनिया

0: चाहते हो?
1: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे। आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, अगर आप सही लिखते हैं, साफ लिखते हैं, तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
0: ओ, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
1: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली, उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
0: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
1: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
0: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
1: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग।

कहानी हम सफर। चार बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हम आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नौजवानों की कोशिशों से भारत 2047 से पहले एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास का इफ्तिताह किया और आलमी सतह पर होने वाले टैक्स मुजाकरात में ब्रिक्स की मजबूत आवाज की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने पहली मरतबा जनूब वस्ती रेलवे पर कवच 4.0 नस्ब किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मुतहदा अरब अमारात और फ्रांस के हम मनसबों के साथ मसनूई जहानत, खला और तवानाई के शोबों में तावुन के बारे में तबादला ख्याल किया। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव साहिल के करीब आ रहा है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। और एशियाई खेलों 2026 में जापान में भारतीय मर्दों और खवातीन की स्कीट टीमों ने कांसे के तमगे जीते। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया है कि नौजवानों की कोशिशों से भारत 2047 से पहले एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। आज वडोदरा में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा के 75वें जलसाई तकसीम असनाद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम उसी वक्त बामानी है जब उसे मुल्क और मुआशरे के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज हर शोबे में तकनीकी तब्दीली रूनुमा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आज दरपेश बहुत से चैलेंजेस का हल कसीर शोबा जाती नुकताए नजर में मौजूद है। उन्होंने तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की बढ़ती हुई शिरकत को भी सराहा। जलसाई तकसीम असनाद के दौरान मोहतरमा मुर्मू ने 12,600 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां तफवीज की और 160 तलबा को मजमुई तौर पर 201 गोल्ड मेडल दिए। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने भी डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया जो गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं, आज वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का इफ्तिताह करेंगी। इस प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट का

भी आगाज करेंगी और विकसित भारत के लिए नौजवान, मुल्क की तामीर के लिए अंदरूनी ताकत को बेदार करना मुहिम का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह भी करेंगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से शुरू की थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी माली इयानत से चलने वाली सेहत बीमा स्कीम बन चुकी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस स्कीम ने तिब्बी अखराजात में रिकॉर्ड बचत करने और गरीब व मुतवस्सित तबके को फायदा पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि 8 साल कबल आयुष्मान भारत इस मकसद के साथ शुरू किया गया था कि हर भारतीय को मेयारी और काबिल इस्तेताथ तिब्बी सहूलियात तक रिसाई हासिल हो। उन्होंने बताया कि आज 60 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीद अफराद को सालाना 5 लाख रुपए तक का सेहत बीमा कवरेज हासिल है, जिसकी वजह से यह दुनिया की सबसे बड़ी सेहत देखभाल की स्कीम बन गई है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब तक 500 करोड़ से ज्यादा अफराद आ चुके हैं, जिससे बुनियादी सेहत की सहूलियात को जमीनी सतह तक मजबूत बनाने में मदद मिली है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि अब तक 48 करोड़ 54 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि टैक्स इंतजामिया कागज पर मबनी और रिवायती बाहमी राबते पर मुनहसिर तरीकाकार से निकलकर डेटा से चलने वाले डिजिटल तौर पर मुनज्जम सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स टैक्स सरबराहान के इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट, पहले से भरे हुए रिटर्न, बरवक्त इनवॉइस तस्दीक और एआई पर मबनी टैक्स दहिंदकान की मदद जैसे इकदाम ने ब्रिक्स के शराकत दार ममालिक की तवज्जो हासिल की है। वजीर खजाना ने कहा कि इस साल ब्रिक्स टैक्स ट्रैक से 3 अहम शोबे उभर कर सामने आए हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, इंतजामिया और इंसानी वसाइल शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे की हिफाजत के शोबे में एक अहम संगे मील हासिल किया है। जनूबी वस्ती रेलवे पर पहली मर्तबा कवच वर्जन 4.0 को कामयाबी के साथ फाल किया गया है। वजारत रेलवे के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरी कामारेड्डी में 108 किलोमीटर के हिस्से पर कवच वर्जन 3.2 से वर्जन 4.0 में अपग्रेडेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है। कवच 4.0 में ज्यादा बेहतर हिफाजती खसूसियात, जदीद टेक्नोलॉजी, ज्यादा काबिल एतमाद निजाम और ट्रेनों की महफूज आमद रफ्त की सहूलत मौजूद है। वजारत ने बताया कि इस जदीद तरीन वर्जन में कवच 3.2 को जनूबी वस्ती रेलवे के 1465 से ज्यादा रूट किलोमीटर पर नस्ब करने के तजर्बे की बुनियाद पर मजीद तकनीकी बेहतरियां शामिल की गई हैं। कवच अंदरून मुल्क तैयार करदा एक खुदकार ट्रेन हिफाजती निजाम है, जिसका मकसद ट्रेनों के ऑपरेशन को ज्यादा महफूज बनाना है। ये निजाम लोको पायलट को मुखर्रर रफ्तार की हदूद के अंदर ट्रेन चलाने में मदद देता है और जरूरत पड़ने पर अगर लोको पायलट ऐसा ना करे तो खुदकार तौर पर ब्रेक भी लगा सकता है। कवच को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये खतरे के सिग्नल को उबूर करने के वाकयात को रोकने में मदद दे और ट्रेनों के टकराव के खतरे को कम करे। ये निजाम नाजुक हालात में ट्रेन की रफ्तार को कंट्रोल करने के साथ साथ मौसम के खराब हालात में भी ट्रेनों के ज्यादा महफूज ऑपरेशन में मदद फराहम करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अन्हयान और फ्रांस के वजीर खारजा जों नैरो बैरो ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास से अलग भारत यूएई फ्रांस से फरीकी मीटिंग में शिरकत की। तीनों रहनुमाओं ने खला, तवानाई, मस्नूई जहानत, तहजीब व सकाफत समेत बाहमी फायदे के शोबों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के 2026 के आला सतह के हफ्ते के दौरान इंडिया सेलेक वज़राए खारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने भारत और लातिनी अमरीका नीस कैरेबियाई मुल्कों की बिरादरी सेलेक के दरमियान मजबूत तर इकतसादी और तरक्याती शराकत दारी के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारत सेलेक तजारत अब सालाना तौर पर 50 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज कर गई है। खलीज बंगाल के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव शिमाली आंध्र प्रदेश, जनूबी ओडिशा के करीब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओडिशा में मौसम की खराब सूरत हाल का सामना है। मुतअद्दिद जनूबी और साहिली अजला में शदीद बारिश हो रही है। सैलाब, पानी जमा होने और मिट्टी के तौदे गिरने के खतरे के तनाजुर में ओडिशा की हुकूमत ने कुदरती आफात से निमटने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने जनूबी ओडिशा के हिस्सों में आज और कल शदीद

परवीन फिल्म का नगमा तुम रहते मुबारक बेगम और साथियों की आवाजों में नगमा निगार थी राजा मीर अली खान और मौसीकार प्यार कुरैशी। आज के मेरे पसंद प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनवा रहे हैं राजा मीर अली खान के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की अगली पेशकश मीरा साय फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है मदन मोहन ने।

वो कौन थी? ये था उस फिल्म का नाम जिसका नगमा भी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। मौसीकार थी मदन मोहन। आज के मेरे पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामीन के लिए, अलीता फिल्म का नगमा मुकेश की आवाज में, नगमनगर राजा मेहर अली खान, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

सामिनी सिर्फ मेरे साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे थे राजा मेहदी अली खां के लिखे कुछ फिल्मी नगमे उनके यौम पैदाइश के मौके पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है जनाब असलम जहांगीर की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी हम सफर।

राहिल और रेशमी के घर एक दूसरे के सामने थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब न जाने क्या हुआ कि दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर बातें करने लगती थीं। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बेचैन रहने लगे। मोहल्ले में शादी की तकरीब थी। नाच गाना शोर शराबा खूब हो रहा था। इस खूबसूरत मौके का फायदा राहिल और रश्मि ने खूब उठाया। दोनों मस्त होकर नाचे और खूब जोगिया राग अलापा।

ये जोगिया नाच गाना उनकी मोहब्बत की तशहीर का सबब बनने लगा। औरतों और लड़के लड़कियों के दरमियान चहमगोइयां होने लगी। एक रोज शाम के धुंधलके में घने दरख्तों की आगोश में दोनों मोहब्बत के सुनहरे ख्वाब बुन रहे थे कि प्रकाश ने देख लिया और रश्मि के वालिदैन को बुलाकर दिखाया। एक हलचल पूरे कुंभे में पैदा हो गई। राहिल और रश्मि सबकी नजरों में मुजरिम हो गई। रश्मि के वालिदैन ने रश्मि को बहुत डांटा और बुरा भला कहा। रश्मि के घर से बाहर कदम रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उधर राहिल के वालिदैन ने राहिल पर सख्ती की और रश्मि से मिलने को मना कर दिया। राहिल इन हालात से तंग आकर शहर चला गया। रश्मि के वालिदैन ने रश्मि का रिश्ता पड़ोस के गांव में तय कर दिया और सगाई भी कर दी, मगर रश्मि अंदर ही अंदर जलती रही। अपनी जुबान से इनकार भी नहीं कर सकती। पता नहीं राहिल उसकी मोहब्बत में ईमानदार है भी कि नहीं। क्या पता वो उसके लिए अपने वालिदैन से बगावत कर पाएगा भी कि नहीं। उसने तो खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। उसके वजूद पर एक खामोशी तारी हो गई थी, न किसी से मिलना न बोलना चालना। राहिल की याद उसके सीने में दर्द बन बन कर उभर रही थी। दिल बेकरारी से उसका

राहिल वापस आया, शहर में उसका दिल ही नहीं लगा। रश्मि की सगाई के बारे में सुना तो बेचैन हो गया। फौरन अपनी मां से बात की, उन्हें बताया कि मैं रश्मि के बगैर नहीं जी सकूंगा, आप लोग उसका रिश्ता तुड़वा दें। आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मगर राहिल के बाप ने साफ मना कर दिया। राहिल किसी तरह रश्मि से मिलने में कामयाब हो गया। उसने कहा कि अगर तुम मेरा साथ देने को तैयार हो तो मैं जमाने भर से बगावत कर सकता हूं। रश्मि ने कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं भी अपने वालिदैन से बगावत करने को तैयार हूं, भले ही रुसवाइयां मेरा मुकद्दर बन जाएं। दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और अहद पैमा किए। रश्मि ने उस जगह शादी करने से साफ इनकार कर दिया जहां उसकी सगाई हुई थी और अपना घर छोड़कर आफताब के घर आ गई। आफताब राहिल और रश्मि का दोस्त था। आफताब ने रश्मि के वालिदैन को समझा दिया कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, इसको मेरे घर पर ही रहने दो। आफताब ने पहले तो राहिल और रश्मि को बारी बारी समझाया कि भी ये इश्क का जुनून वक्ती उबाल है, शादी के बाद तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा, फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, खूब सोच समझ कर फैसला करना, तुम दोनों तो समझदार हो, अकल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उम्र भर साथ जिंदगी गुजारने का फैसला है। राहिल और रश्मि ने आफताब से कहा कि अब अच्छा यही है कि हमारी शादी करा दी जाए, हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, भले ही सारा जमाना दुश्मन हो जाए। आफताब ने राहिल

अभी राहिल और रश्मि की शादी नहीं हुई थी। खाना पकाकर दोपहर को रश्मि खुद दफ्तर ले जाती और दोनों साथ साथ खाना खाते। एक दिन रश्मि खाना लेकर दफ्तर पहुंची तो राहिल अपने कैबिन में नहीं था। रश्मि टिफिन हाथ में लिए हुए मैडम के दफ्तर में गई कि शायद यहां हो। क्या देखती है कि राहिल कुर्सी पर बैठा है, मैडम पीछे से कंधों तक खुली हुई बाहें राहिल के गले में डाले हुए हैं। उसकी घनी जुल्फें राहिल के शानों पर बिखरी हुई हैं। मैडम की खनकती हुई हंसी दफ्तर में गूंज रही थी। कुछ लम्हों तक रश्मि ये मंजर देखती रही। जब उसको चक्कर से आने लगा और टिफिन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा तो आवाज पर चौंक कर राहिल और मैडम ने रश्मि को देखा। इससे पहले कि वो रश्मि से कुछ कह पाते, वो जोर से दरवाजे के किवाड़ बंद करते हुए बगैर टिफिन उठाए वापस चली आई। घर आकर बिस्तर पर पड़ी रोती रही। शाम को राहिल घर आकर रश्मि पर बहुत नाराज हुआ। मैडम के दफ्तर में बगैर इतला के क्यों पहुंची और फिर इस तरह बदतमीजी से वापस क्यों आई? रश्मि को बहुत गुस्सा आया कि अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, उल्टा मुझ पर नाराज हो रहे हैं। बोली, जब मैडम से ही रोमांस करना था तो फिर मुझे जमाने भर में रुसवा क्यों किया? राहिल ने समझाने की कोशिश की, मैडम को खुश रखने में हमारी भलाई है, वो हम पर मेहरबान है। अगर मैंने उनको इस तरह खुश रखा तो इनकी इनायतें हम पर बढ़ती जाएंगी। मगर रश्मि को ये बात गवारा न हुई। अगर ऐसा करना है तो मुझे घर भेज दो। दोनों में बातचीत बंद हो गई। शाम का खाना दोनों ने नहीं खाया। सुबह को भी राहिल बगैर नाश्ता किए चला गया। रश्मि घर पर यूं ही रोती रही। फिर बाहर आकर आफताब को फोन किया और सारी बात बताई। अगले दिन आफताब आ गया और रश्मि से मिलने के बाद राहिल के दफ्तर गया और उस पर बहुत खफा हुआ। आफताब ने राहिल से कहा कि रश्मि के सामने अपनी गलती का एहसास कर लो और मैडम के साथ अपनी बेतकल्लुफियां शराफत के दायरे में रखो। राहिल ने कहा, अगर मैं ऐसा न करूं तो? आफताब ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं रश्मि को अपने साथ घर ले जा रहा हूं। राहिल ने कहा, तुम रश्मि को ले जाओ, मुझे इस बदतमीज लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना है। राहिल पर मैडम की दौलत और जवानी का जुनून सवार था। आफताब रश्मि को लेकर घर वापस आ गया। अब रश्मि फिर आफताब के घर रहने लगी। वो तो अब कहीं की भी न रही। अपने वालिदैन को वो राहिल की खातिर छोड़ चुकी थी। हंसी उड़ाने वाली नजरें हर वक्त उसका ताकुब करती थीं। होंठों पर खामोशी और दिल में सर्द आहें उसकी साथी थीं।

तुम? वो मेरा मेहमान है, मेरा दोस्त है। तुम होते कौन हो उसे मेरे घर से निकालने वाले? तुम जैसे घटिया आदमी को मुंह लगाना ही नहीं चाहिए था, मगर वो तुम्हारे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। राहिल ने सफाई देने की कोशिश की। वो मेरा दोस्त है, वो कुछ भी कर सकता है, मैडम ने कहा। तो राहिल को और ताव आ गया। मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है, राहिल ने अपना हक जताने की कोशिश की। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, मुझे इसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें बुरा लगता है तो तुम अपना काम करो। मैडम ने पूरी तरह उसका भर्म तोड़ दिया। राहिल बोझिल कदमों से अपने घर की तरफ आया, सर पकड़ कर बैठ गया। दिल बहुत उदास हो रहा था, टूटे हुए दिल ने सरद आह भरी। रश्मि की आंसुओं से भरी आंखें उसके तसव्वुर में आ गईं। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी कि नहीं। अगले दिन गांव वापस आ गया, आफताब के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। आफताब ने कहा, माफी तो रश्मि से मांगो, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द तो तुमने उसी को दिया है। राहिल ने रश्मि की तरफ कदम बढ़ाए। हो सके तो मुझे माफ कर दो रश्मि। रश्मि दौड़कर उसके गले से लिपटकर रोने लगी, मगर इस रोने में खुशी भी शामिल थी।

सभी वे आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी हम सफर। तहरीर जनाब असलम जहांगीर की थी, पेश कर रही थी फूला पंडिता। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 2171 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों की आज के प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए बंटी और बबली फिल्म का नगमा अली चिनाए, शंकर माधवन और साथियों की आवाजों में, मौसीकार शंकर एहसान लॉय।

सुहाग फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे, आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की। नगमनिया थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए, कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का नगमा, आवाजें हैं अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले और साथियों की। मौसीकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

0: जुडिशरी एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर और अति सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक पहुंच की जो 370 का सबसे थे ना देना बस इतना दो सही थे सुधरे क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट पार्लियामेंट ना पास है ना पार्लियामेंट जो लोकसभा है अति मेंबर सौ दोनों का माति नहीं निश्चुन है बस इन्हें अति नुमाइंदा है और ध्यान पहला सीधे ऑर्डर पर पहुंचाना जब 370 पहला आता टेम्परेरी प्रोविजन बता जाना आर्टिकल 21 देता ना सी क्लॉज पर ध्यान मतलब प्रोविजन को टेम्परेरी प्रोविजन पर पहुंचाना प्रेसिडेंट थ्रू पहुंच में जो और जो थे आती पार्लियामेंट यानो मेजोरिटी लेजिस्लेचर आती एम पी सा और दोनों पास बसे दे देनो एक सिस्टमेटिक वे मैंने सुप्रीम कोर्ट से दे हक में वर्डिक कांस जो कि अता सा सुप्रीम कोर्ट फैसला हो मनी बार
1: 370 पार्लियामेंट पास शाना सुप्रीम कोर्ट से देने का डुल जरूरत देखा मन सल्फो असि मीन लहा को छुपी फिया कानून इस गसुक छु बसे निकलम सही स्टांस बिजो
0: मेरा जना दो जो समझो कि मतलब दखन चिकची की फेवर हंस पर न खोज दे सीन जो ठीक लुक अगर फेवर हम मैथ खान तो सीन आने मुझे गलत बस गलत समझ है अलबत्ता कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट जो कागजी जो चीजें
1: अच्छा सबूत नहीं
0: सबूत नहीं हम दे चीज उन मद्देनजर बस ना ये फैसला तंखन पिन हाँ अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट इस पार्लियामेंट ने जो डायरेक्शन था उसकी ध्यान मीनी जो इलेक्शन होता खासकर असेंबली इलेक्शन को लेकर के भी दी कहते थे इलेक्शन था से अवामी जो मुश्किल और दोन परेशानी दूर गुजरे सुप्रीम कोर्ट इज दे ऑर्डर
1: इलेक्शन मचा दो वकील साहब छाना दे वजह चीन में 2024 इलेक्शन सो असेंबली दे खचिक साल पो बस मुल्ला
0: यहाँ खचुली हालात को 2019 सपाता हड़ताल गत सबसे लुस्बत भी यहाँ छः छः महीना हड़ताल सो मिलिटेंसी पी और सिक्योरिटी देना चाहने का तो गवर्नमेंट नहीं जो एजेंसीज ना देना सा रिपोर्ट हूँ उसकी मतलब हालात ठीक मसूँ हालात खराब गुजरे टेंस बढ़े छे चाँच गुजरे ये चीज़ उनका मद्देनजर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हालात को ठीक सो से साजगार सो से देखा मेरा पता दो बस पहला जम्मू कश्मीर इलेक्शन से वोट परसेंटेज पता हम शायद भी
1: सही
0: 2% 5 मगर 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 थे या पंजाब 2024 इलेक्शन सो यार वोट परसेंटेज बोल दो इतना बड़े सो सो कहाँ गा डिस्ट्रिक्ट ने हमारे वोट छम ही शायद तीन दे डिस्ट्रिक्ट ने आनो 50-60% वोट का सो देखा ना आता थोन की मतलब आम मी चाम से दिखा खुश डुक जरे ताम से दिखा थतपा डुक जरे
1: सही लद्दाख मरकजी जेरी इंतजाम चौसर की अपना यूटी चौसर की अपना दिया नुंगाती इलाकाई मतलब एक जाती थों जस या जमहूरियती नजर आता ना दोन आईनी नजर आता ना दून सा का यरा का सुख छुतों जो कछु की स्तन पे एक मीमा सुनी रोख सुन कसा
0: दी 370 थेनेर यापना आती यूल ने काफी चेंजेस पॉलिटिकली काफी चेंजेस हों नती मीन गामा काफी मी मेजोरिटी में खुश हो काफी अलबत्त पोर्शन खचिक नाराज हो देखा लस खचिक मगर नता खुशी से पेरा दो कि दखन सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमित शाह साहेबी लीडरशिप अनु और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत अनु नता दो मतों में छिक खून नाराज से दो खून अच्छी चीज पे खफा दुख जरे सेंटर बातचीत फिर बुलाई बसे बातचीत टेबल पे कही जरे कमेटी बिठाई बसे अति ची मांग दुख जरे हर बातचीत छेन और दो नमों अति लद्दाखी अवामीन लद्दाखी ची मांग उतना ची ख्वाहिश उतना इवन की अति होम मिनिस्टर अमित शाह कुंडू ने संगता दो एश्योरेंस था कि मतलब लद्दाखी अवामी ची खोसरे उतना खोई ची डिमांड चुने दो अमांगस पूरा बेत उससे भी बढ़ चढ़ कर बेत जरे मता दे एश्योरेंस पता दो अति फिलहाल काफी यलास पे और उम्मीद था कि गति जो कमेटी नहीं होती और सेंट्रल लीडरशिप मशपेरा था उसे दखा स्पेरा डुले नहीं होता देश पेरा दखन नेक्स्ट मान गति अक्टूबर में करगिल हो रहा जाए ने मुद्दे स्पेरा जा सकते मैं दे चीज उन्हीं का जग ब जग पॉजिटिव रिस्पॉन्स यो यो न और गति ची डिमांड चुनने का तो नहीं समझे कर जाए इनके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी दी

health care ko kafi issue on chin dono warning sign pu khoni chi chon chin ko chi chi wasilain zabana khoe kafi dimag ko kafi weak chachin khoe behavioral bin kafi changes on chin dono khoe bejurs kuni kan ta khoe pata chachin di chis kon ya juadi drugs khunika di adat sagi kangate bachai bi fila sab se pehle chi bachin se bana community exposure bacha matlab maximum ra fun lagar di chus di sign kun anti thona khoy mental health ya dukhi ne shut hona ko maximum anti ho counseling bacha kho du du in du du in zare agar वैसे इंशाल्लाह मती यूं मी जनरेशन पो काफी दरां बचाई सोचियो तो और दी चीज की नगर आती इंशाल्लाह ओमी टाइम पे निश्चित काफी बचाई सचिन या दूसरा चीज वो हेल्दी मैकेनिज्म एक दुखिक बचा जिससे कि खो एक्सरसाइज बचुक चा मतलब दोनों जिसने योगा बचुक चा खो पीसफुल माइंड खोए दुखे बे कोशिश बचा दोनों को काफी काफी मतलब अति अवेयरनेस कैंप में जब तक हुई फिला काफी यूथ को नंबर इन्वॉल्व जब से खुद दे चीज पे ना मैक्सिमम अर्ली टाइम का पहला पहला ला को लास्ट स्टेज के मामले पर जल्दी दे चीज पे ना फिंग मरगोशिन और ड्रग्स के सुंग किंग अति करगिलो इन छेन दूसरे दोनों का माशाल्लाह अति एडमिनिस्ट्रेशन अति पुलिस डिपार्टमेंट इस काफी लास्ट मिनट दे चीज पे का अवेयरनेस कैंप से जक्सियत और इंशाल्लाह यूं मी दिन कुनी सिंह आती एडमिनिस्ट्रेशन आते पुलिस डिपार्टमेंट इस काफी देख के चीज पे का लास्ट बसे आती यूथ कुनला काफी मोटिवेट बसे जैसे कि मैक्सिमम आती श्रीनगर लजन सी काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देन उस जगत क्योंकि आती यूथ कुन स्पोर्ट्स ना काफी चीज कुनी नो बिजी लुस बना दे चीज को ना दूर लुसित यूने मैक्सिमम का टूर्नामेंट चिक फेस्ट ना देनो सबसे पहला अंगाती मेंशन दो बेंदु कि हम ये टूर्नामेंट इसीलिए चला रहा है क्योंकि यूथ को मतलब ड्रग से दूर रखना चाहते हैं और दोस्त इसने से अंगाती करगिला से काफी पहला बच्चे आज का जमाने में स्पोर्ट्स में हमारे लड़के काफी मतलब एक्टिव युत छुता युद्ध पनाती दे जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट जर वॉलीबॉल टूर्नामेंट जर या टेबल टेनिस जर या अब दरे मैक्सिमम टूर्नामेंट आती डुलबत साल इनो पहला एक टूर्नामेंट डुलबत दरे पांच छह टूर्नामेंट डुलबत तो आती युद्ध कुन यों में ही देन एक्टिव लुस पना दे चीज को ना दूर लुशिन और यंग प्रिवेंशन भी देखो ना एक सोसाइटी ना सोसाइटी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है अगर यारी फ्रू या यारी बुझा ना बोमुंग इसका एक सोसाइटी गंदा सोसाइटी ना बोखटना खुद ये चीज पे नो 101% को इन्वॉल्व छचिन या दे एक्टिविटी नो क्योंकि एक सोसाइटी एक ऐसा चीज है मानते कि उससे आपका एक ट्रू एक निखार के एक अच्छा भी बन सकता है गलत भी बन सकता है एक सोसाइटी बनता है कम्युनिटी बनता है कॉलेज में एक इन्वायरमेंट बनता है उस चीज का इसीलिए मैक्सिमम हो सके गाती फ्रून बुछा न बोमोन एक बढ़िया सोसाइटी ने बुझाचा क्योंकि होम टाइम कुंसी काफी मैटर बात सोसाइटी का दोना रा या तामन इस रा फ्रून ला मोतुक में ना फितोक चेक टाइम फिंग से मतलब एक हदायत ची काफी तंग से अच्छा जब ना दरी सी तामस रंग नंग इलासी का ज्यादा ध्यान तां दुक रंग फ्रूनी का काफी ध्यान तां में दुक मतंग मना दरी 15-16-17 डीएच पे नुक फ्रू को या बमो का तो डिप्रेशन ही होंडु डिप्रेशन होंडु कौन बाजार ला डेरा फिंग से दोंडु दी केस पुंगा काफी थों नीम की गोली नी दोंग में इसमें मामोज उसे उत्सुक को बिचारस तो उस चीज में अता आमस खोस डेरा दुख से साख सिलिंदो आमिंदो आजरे या नियन ना रंग फोनो में इतना या दुखों में इतना रंग टाइम फिंग से रंग फ्रूनी का एक बार ध्यान दामा सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन चाहे जब ना डी एज पे नो खो ना टीन एज पे नो खो पता चाचा में खो गा डायरेक्शन इच्छे नो जरे गा डायरेक्शन इच्छे नो गा मैक्सिमम दी टॉपिक पे कंगांती यूथ का चाह तांसिन क्योंकि गांती यूथ फो मेन इन गा चीज शिकेन ना सीखे तो दया गांती यूथ को निन मेन चीज ताना यंग जर ना सीख करगिला दुत्से गांती ड्रग्स इन दुत्से इन्वॉल्वमेंट तो

0: में टाइम को नहीं सिंगाते काफी या महीने ने या क्वार्टर ले आते अवेयरनेस के हम जब से ड्रग्स का मंती फ्रूनला दे चीज पे आगा बार को शिंदा ता टाइम पुसी मामो सोंग सब शुक्रिया मेहरबानी
1: कसता दसासक पो यंतेस त्रिसु गसना बिन जुक्सोपिन रियामा जगे ती त्रिसु ने कने यंतेस फन के लिए ने दुक्तुक त्रिसिर यमना यंतन सखपे समस्तोत खेलिप चुगेत नुनु अकिलिस कत्या
2: بسم الله الرحمن الرحيم مدح حضرت امام زين العابدين عليه السلام

0: आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी खबर रिले बे रिले उला केर बाजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
2: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
1: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा त्यास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार

0: इंडिया सनती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस जो मुहिम च गावला स्वच्छता ही सेवा 2026 कौन इस मिनटस तरह से दुख गांव नुक जो स्कीम ही जो मुहिम ही नाम जो सला कौन इस यक थीम चीज आसे दुख जो 2020 स्वच्छता में सहभाग स्वच्छता में सहभाग स्वच्छ भारत विकसित भारत तो जो तो कौन इस जो अति मुहिम ही इसको ला जो कौन इस थीम चीज आसे दुख जो मुहिम पोदी चौसी जो आते 17 सितंबर कना बाकी आते हिंदुस्तान घर घर अलग अलग स्टेट ने या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो मुहिम पोस्टूल नहीं होता ज्यादा सो आती डिस्ट्रिक्ट करगिल आते जो सिक्किम पोस्टूल नहीं होता चाहना जो सिक्किम पो जो 17 तारीख जो आती सिक्किम पो आती या डिस्ट्रिक्ट करगिल आती मुख्तलिफ बुला गया या आती मुख्तलिफ पंचायत या मुख्तलिफ गाँव सा जो सिक्किम पो आती जो मुहिम पो आती जो स्टूल नहीं जो दरान स्टूल नहीं होता गांव नुक पहला खून इस सतारे जगह खुरान जख्सियत पिंजू दे कलिनेस एंड सीटीयू तो गांव नुक अति रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अति हर ब्लॉक या अच्छी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर युत दे अति पंचायत सेक्रेटरी हर पंचायत है युत गांव नुक दे अति सपोर्टिंग स्कीम ची अच्छी इधर वीबीजी रामजी युत दे अति जीआरएस युत चाना अच्छी डिपार्टमेंट है चाम ची आमला युत ना खून सख्त यंबो चिक्सों से खून इस जो स्कीम पों अति ग्राउंड लेवल या जैसे आता कैलेंडर थोप से युत दे कैलेंडर मुताबिक खून इस जो मुहिम पो अति रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फील्ड स्टाफ ने जो मुहिम पो अति गाँव गाँव है या पंचायत पंचायत है खून इस जो स्कीम पो सॉरी जो मुहिम पो खोन इस बेन जो है गांव नुक पहला खोन इस जख्सियत पिंसु जो कलिनेस एंड सीटीयू ते दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन गाचा अर नहीं उत्सुक कि जहां भी जिस गांव में या जिस पंचायत में या महला चिया या यंती यूली थामा जगह चिया या यंती अर लुंगमे उमे की ना अगर देना यंती गांव पानी जेना बुसा जेना बोमो जेना सरमत सुनसे जेना गाओ दे अति खेमसा हो खेरे दे अफां से पूरा मन गंदा बस ना उदेश ना ता जैसे जो खून जियो टेक फुटू पहले जगह यानी 17 सितंबर जगह अति हर गांव आया हर पंचायत है अति पंचायत सेक्रेटरी ने दे रांसू से पंचायत सोम से खुंती दे पंचायत तीन नाजोसला गार गंदा बसे जैसे अति खेमसा गार फां से दे मन तबाह बसे ओदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सांचा कैलेंडर जी तांसी पिंजू गाँव नो खो जरे कि जहां पे भी गंदा है या अति खेमसा फांस से पूरा मा पहाड़ चीजा नहीं होती या ना अति ब्लैक वाटर होती
1: बिल्कुल कस
0: तो ओदो निस्ना मैंने जियो टेक बचा ताकि बिफोर जियो टेक बचा भाई कि जियो टेक या अति लोकेशन पूरा स्थान दुजू की आप कहां से ये फोटो क्यों से दुख गाना अपलोड बस से दुख जेखान पो छाना दे जियो टे की तह आती सेंटर या आती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आती दे दुखन आमला ला थोची इनकी गा करगिली गा पंचायत या दे खेमसा फां से एक पहाड़ चीजा ने दुख ओदे कना खून ला दे जियो टेक दे थोन दुख तो उस जियो टेक हिसाब या दे कहना दूसरा दिन या तीसरा दिन आते दे कोशिश बस की आती गाँव व दुखन आती सरपंच आती सॉरी आती सरपंच नहीं होती मैं आती एक्स सरपंच आती एक्स पंच साहेबान आती अगर दे गाँव आती एम पी होना एम पी जरे दुख एम एल एम एल ए जरे दुख या आती गाँव सीनियर सिटीजन जरे दुख दो नम्बो यम्बो खोन स्ट्रोली का अच्छा जो कोशिश बसू की आती अगर गाँव हाई स्कूल यून हाई स्कूल इफ्रून मिडल स्कूल यून मिडल स्कूल इफ्रून या आती प्राइमरी लेवल स्कूल है योजना दोन सख दे नम्बो यम्बो आती मेडिकल जो मेडिकल डिपार्टमेंट या आती लाइन डिपार्टमेंट गाँव गाँव खोन आमतौर गाँव दुख से ड्यूटी बेन दुख खून सख आता सख भी से आती युलपा छो का फोन दो नम्बो यम्बो भी से मैंने एक जुलूस सूरत है जो आता सख भी से आती गाँवी खरखोल ला या आती दे अफान से मन गंदा बसे ना दो आते साफ बसे बिल्कुल साफ बसे आती रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस ऑलरेडी खून ला गाड़ी तान जो दे गाड़ी इस खून साफ बखान दे खेमसा आती सेग्रीगेशन प्लाट सब पल चुचा गाँव आती युल जरना आती पंचायत जरना या आती विलेज जरना आती गाँव वो साफ जक भी जो एक मुहिम ची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टूल ताकि आता सिरों आती नंग सकपा तेस नंग गचुआ साफ जाकपा तेस नंग दरे सोमा डिजाइन है दरे की कारपेट थी से होंदुजू चाहना गाँव यार ऐसे यारी नाम पोरा तां से मारा पलाई बोर तां से या किस्म किस्म की जिंदा यों से दुख देवो ना यंबो यंबो यार ऐसे यारी नंग जिंदा सकपा सिर्फ साफ नहीं बचा बल्कि यार ऐसे यारी गाँव

आकाशवाणी डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन इस दिन आकाशवाणी करगिल जिक्सखोर बस स्टेशन लजद्रुल स्कोर लबस तलुक्स यूनियन टेरिटरी लद्दाख से गमील एरिया से महकमे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी निधि मलिक इस बस जिल लजंसकर जिक्सखोर यकमा चिकपा लोकसोस खातुन अनुक मोशायरिक डिग्री कॉलेज संकुई कैंपस लल्ती ब्रांसा संकुस कैंपस उर्दू महकमे लखोस मल्ला दुना आयुर्वेद इस गस्त्री तिजक नजम से नेशनल आयुष मिशन करगिल चीफ मेडिकल ऑफिस लखोतिका जिला अस्पताल करगिल मलिंगोस तकरीब चिकसता खबर सिर नहीं आकाशवाणी डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन इस दिन आकाशवाणी करगिल जिक्सखोर बस स्टेशन लजद्रुल तालुक्स बस दिवस लखो स्टेशन फ्रम चिक सेक्शन सगिल तालुक्स बेवक्सला नशरियातुन खबर दुना टेक्निकल ना इंतजामी ऑपरेशन सगिस्को लिटा फुनिकन सल्फो बस अहगुन लेंस डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी करगिल सिटा फुनिस खता गुन्ना कल्चर पोस्ट्रोलिका फेफसूस बस खोजियांग मीमा सुनिमी न खबर थे पुलिस के दया नचोसला दी स्टेशन उन्हें चिंगन लोकल नशरियात सकफुत तमीन गुम्बन लेंजरन योम।

Radiation polar station zostaje jak gorie basen zere serset. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लोरगत पु घर गया बसेन वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिद्धि सिक्किम पुस्तनालोस्त उन्नीस न चुप गति सितम्बर इल्सेनो झारखंड रांची न कोजुक बासों गांव मियुली सक बसाओ छोगो रोक से का डुलखन और देलुक्सी भीमा सिक्किम चिक अल्धा ने धुन लाई हो सेन जरे अजर सत सोशल मीडिया पोस्ट का वजीर आजम इस लोरगत धुन ला आयुष्मान भारत पु दीतोन पुनेम्बो गोजुक बस खन इन मिंजरे अजर बसों फिर मैं वजीर डॉक्टर एस जे शंकर इस म्यूली खत्ता जुनूबी यूलुन सगे बरियानुक लखथुत पुलस के ख्यों मार्गो सुखरे जरेन वजीर मौसूफ इस न्यूयॉर्क अकवाम मुत्तहिद निशुशी ने चिगिरसी जनरल असेंबली ने लोकसवा म्यूली खत्ता जुनूबी यूलुन सगे ग्रब्स पुनगर गंचिक दिस पेरान असर बसों खोजा म्यूली नमजास के तंची योत्खन तनाजान दुना छोंगले ने फ्योक्सियानो को थिक में तीर कबलस बर्दों सगां थों इंचिक योत इंजरे अजर सेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस कोलकाता दिल्ली दोना बेंगलुरु मलसा चुजरू की कल चल चल जो जो बेंचिक योतिन गाउन इंजीनियरिंग फॉर्म मैकनाले न भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड MBECL न थुते योते इंजरे अजर बसों ईडीस चल चल वेदी कार्रवाई गेगारी जम्बाला इंजिबाती एक्ट सनालोस्तों चिगनर गुबगन अरगुपचू नरगुई FMEA नालजोंस मालियानो क्यों अंचिक अयोत इंजरे ऐसे रेन फिरमाए वजीर डॉक्टर एस जे शंकर मुत्तहद अरब इमारात UAE फिरमाए वजीर शेख अब्दुल्लाह बिन जायद नहियान फ्रांस फिरमाए वजीर जेन नोएल बारो नंगम्बो न्यूयॉर्क अकवाम मुत्तहद जनरल असेंबली निशुर सख्शी गिरसी खोरतांस बुना लोकसवा भारत ने UAE दोना फ्रांस युलसुम्पे ग्रब्स पे अंकक लेंस दिवासला गोबा संका सशनाम क्यों तुष्टोस मलदात्पा क्रिम्स दोना एचोक्षी की फंतोक चनुष्मान सगाईका खुंती समझोन उंगुन चुकसीन कसता खबर निशांसे का नमजा इसको लदरिंग करगिलो आंगी मा नमजा उथांसलु जान दरिंग इंगी मी छाती थिक पु करगिलो आंगी शुर चाजपी डिग्री सेल्सियस दाना चोसला गंदे सनी छाती थिक पु जी एशारिया और गु डिग्री सेल्सियस रतास नबास लदरिंग इंगी मी छाती थिक पु चोप यद एशारिया इंगीस डिग्री सेल्सियस दाना चोसला गंदे सनी छाती थिक पु गा डिग्री सेल्सियस रतास नबास द्रास लदरिंग इंगी मी छाती थिक पु इंशु चक्षी एशारिया गेट डिग्री सेल्सियस यंग गंदे सनी छाती थिक पु चुक एशारिया इंगीस डिग्री सेल्सियस रतास नबास पदुमा दिरिंग इंगिमी साथी थिक पू चुप दुन एशारिया और गियर डिग्री सेल्सियस यंगोंदे सानी साथी थिक पू त्रुग एशारिया इंगिस डिग्री सेल्सियस रतास नबास खला चे दिरिंग इंगिमी साथी थिक पू इंशुर सक्सुम एशारिया गा डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सानी साथी थिक पू चुक्षिक डिग्री सेल्सियस रतास नबास डिस्किद नुब्रा दिरिंग इंगिमी साथी थिक पू चुप गया एशारिया सुम डिग्री सेल्सियस यंगोंदे सानी साथी थिक पू दुन एशारिया और गु डिग्री सेल्सियस रतास नबास गिलिद ला दिरिंग इंगिमी साथी थिक पू सुम चु सक्षिक एशारिया एशपी डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छानी छाती थी पुचुप दुने शारिया इंग्लिश डिग्री सेल्सियस तक्षनाबास यंग स्कार तो आदरी इंग्लिश छाती थी पुचुप इंशु चगा शारिया सुम डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे छानी छाती थी पुचुप इंग्लिश शारिया अज्पी डिग्री सेल्सियस तक्षनाबास दिन इनमें दर सक पे पुर्गी खबर उन्हें इज़ इंशाज़ दे बस यश भी खुदा नर्स सामानी फकरियां

तमाम प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके हमजाद की। आ गई तनख्वाह, अब नए झुमके ना, पहले बचत पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा इन्वेस्ट करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन वो झुमके
0: जाती हो कि
1: हाँ।

गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश

0: भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल

0: इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: एमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाले कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं।

0: रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरूका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference. Says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the U.N. General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot participated in the India-UAE-France trilateral on the sidelines of the 81st session of the United Nations General Assembly.

0: Before joining ATL classes, I think that studies and subjects were more important for every student. But after joining the ATL class, I learned that how skills and innovative thought help students to make their future bright. Here, I learned many new things like Arduinos and sensors, how they work and how they use in our daily life.
1: ATL Innovation Mission is creating and promoting a vibrant culture of innovation and entrepreneurship across the length and breadth of India. It is creating employment, products and innovative processes by fostering collaboration, vision and passion. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: A deep depression over the Bay of Bengal is moving towards the North Andhra Pradesh, South Odisha coast and is expected to cross tonight. The system is likely to cross near Kalingapatnam between tonight and early hours of tomorrow, bringing very heavy to extremely heavy rain and squally winds. Indian men's badminton team settled for the bronze medal after facing a 1-3 defeat to China in the semi-final in Aichi, Japan today. Indian player Lakshya Sen lost the opening match 21-16-21-18 to Shi Yuki before Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty leveled the tie with a 21-11-21-20 win over reigning world champions Liang Wei King and Wang Xiang. The bronze medal takes India's overall tally to 12 medals, 1 gold, 5 silver and 6 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settled for bronze, taking overall tally to 12 medals, including 1 gold. And that's all in the news at 9. Good night.
3: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shabana Begum. भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमरीका के फैसले पर अपने मफादात और तशवीशात को दोहराया है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सेटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। खलीज बंगाल में हवा के गहरे दबाव का हल्का शिद्दत इख्तियार कर गया है। साहिली ओडिशा और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश हो रही है। और एशियन गेम्स में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने कांसे का तमगा जीता है। तमगों की कुल तादाद 12 हो गई है, जिसमें सोने का एक तमगा शामिल है। खबरें तफसील से। भारत ने आज एक बार फिर रूस और ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक कानून के हवाले से अपने मफादात और खदशात को दोहराया है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज शाम अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की और मस्कूरा कानून के बारे में अपनी तशवीशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, नीज खलीज और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस और ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक कानून पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत उन्हें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर 100% तक महसूलात आयात करने का इख्तियार हासिल होगा। इसके जवाब में भारत ने कहा कि वह अपने माशी मफादात के तहफ्फुज़ और मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए सभी जरूरी इकदाम करेगा। जनाब जयशंकर इतवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां वो अक़्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफ्द की क्यादत कर रहे हैं। जनाब जयशंकर ने मुलाकात के बाद जनाब रूबियो से कहा कि भारत और अमरीका अहम इलाकाई तरजीहात पर

0: भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के आबोहवा में तब्दीली और तवानाई के वजीर क्रिस बोवेन से मुलाकात की। जनाब बोवेन तुर्की में इस साल 9 से 10 नवंबर के दरमियान होने वाली कॉप 31 मुजाकरात के सदर भी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने फिजी में अनकरीब होने वाली कॉप से पहले के मुजाकरात और तुर्की में होने वाली कॉप 31 के कलीदी मामलात पर अहम तबादला ख्याल किया। मकानात और शहरी उमूर से मुतालिक वजारत ने आज नई दिल्ली में 11वां यौम आयुर्वेद मनाया। ये तकरीब आयुष की वजारत की जानिब से मुल्क भर में मनाए जा रहे यौम आयुर्वेद के हिस्से के तौर पर मुनाकिद की गई। आज जापान के आईची एशियन गेम्स 2026 में मर्दों की भारतीय बैडमिंटन टीम ने सभी

इस बीच से हराया। इस तरह कांस्य का तमगा जीतने के बाद भारत के कुल 12 तमगे हो गए हैं, जिनमें सोने का 1, चांदी के 5 और कांस्य के 6 तमगे शामिल हैं। ईरान के सदर मसूद पजिश्कियान ने दावा किया है कि उनके अवाम अमरीका की जानिब से दहशतगर्दी से मुतासिर रहे हैं। सदर पजिश्कियान ने मरहूम रहबरे आला अली खामनेई और जंग के शुरुआती दिनों में हलाक हुए 150 से ज्यादा स्कूली बच्चों की तस्वीर ले रखी थी। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर महसूल लगाने के अमरीका के फैसले पर अपने मफादात और तशवीश को दोहराया है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम के जम्मू कश्मीर के हवाले को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए 160 सेटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रूपये से ज्यादा के समझौते पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी ने सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी के इंचार्ज और माविन इंचार्ज का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।